धुम घाम राइट माधाम साथी धुम धाम राइट तपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभी सँग लाइट छ सुपर फन एल्डर्स लभ इट सो